अभी आप FM 100 से सुन रहे थे तिलावत कुरान पाक, तिलावत कारी वही जफर कासमी, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी, आवाज़ शमशाद अली खान की थी।

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365
2: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM247365

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
4: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स अगर आप स्टूडेंट हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए Register now at cyberhackathon.pk.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL.
6: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
0: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
7: This program is brought to you by
0: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL
8: and Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
4: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taja
9: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
10: FM 100 31 saal FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
11: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBO Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
7: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा एंड

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: 100 FM.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
5: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
6: एंड

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: 100 FM
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
7: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा

0: your location for maximum music.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: 100 FM.
3: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: 100 FM.
3: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: This program is brought to you by HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: And Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
5: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
6: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: 100 FM
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: 100 FM.
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: FM247365 FM247365

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुताबिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: facebook.com/fm247365

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में, जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फोन रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रातों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम रातों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 1-6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल।

0: ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है, अकाउंट तेजी से फाल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट इनाम सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेज चेक करें। सेटिंग्स लिंक डिवाइसेज, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
1: ये मुफाद-ए-आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 247 365

0: All right, जी, so we are back again, और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम कुकिंग स्पेशल विद मी फातिमा खान एंड वी हैव कुकिंग एक्सपर्ट रिदा आफ्ताब एंड वी हैव वेरी लेस टाइम विद यू, तो आप जल्दी से हमें ज्वाइन कर लें क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो हमें मैसेज करती हैं जरीन नूर, कहती हैं सलाम, कैसी हैं रिदा जी, को भी सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कहती हैं रबड़ी खीर की तरकीब बता दें जरीन नूर।
1: चले नोट कर लीजिएगा। अच्छा, रबड़ी खीर के लिए क्या है, आपने लेना है तकरीबन 2 लीटर के जितना दूध, 2 से 2.5 लीटर, ठीक है, लेकिन फ्रेश वाला लीजिएगा, ठीक है। उसको आपने हल्की आग पे चूल्हे पे पकने के लिए रख देना है, ठीक है। आपने लेना है इसके अंदर 1 कप चावल, चावल को धो के साफ करके उसको थोड़ी देर के लिए आपने भिगो देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 1/2 कप दूध डाल के उसको ब्लेंडर को चला देना, साथ में 3-4 आपने इलायची भी डाल देनी है, और तकरीबन आपने 10-12 आपने इसमें बेशक बादाम भी डाल देना, उसको आपने चला देना है। अब वो बिल्कुल जैसे दाने दाने की तरह हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, इसको दूध में डालेगा और चम्मच चलाती रहेगा जब तक कि इसमें सही तरह से उबालना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो बेशक हल्की आग पे इसको आपने रख देना है, कम से कम 1 घंटा आपने पकाना है। अच्छा, जैसे जैसे दूध ड्राई होगा तो साइडों पे ना उसकी बलाई जमा होती रहती है, तो आपने चम्मच से वो बलाई उतार के ताकि दूध के अंदर ही जाए, वरना वो सूख जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, चम्मच से वो सारी बलाई उतार के वापस उसी में ही डालते जाए। अब जब आप देखें कि बिल्कुल वो गाढ़ा सा हो गया, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने 1.5 कप चीनी डाल देनी है। 1.5 कप चीनी डाल दीजिएगा, चीनी डाल के दोबारा पकाना है कि ताकि वो थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि ये खीर बहुत अच्छे से गाढ़ी होगी। अब 1 कप के इतना खुश्क दूध, जो ड्राई मिल्क फुल क्रीम मिल्क होता है, वो आपने डाल देना है। डालने के बाद अब आपने चूल्हा बंद करना है, उसके बाद आपने इसको निकालना है मिट्टी के किसी बर्तन में, और उसके ऊपर आपने बादाम, पिस्ते, जो जो आपने डालने हैं, और चांदी के वर्क लगाना। तो इस तरह से रबड़ी खीर जो है तैयार हो जाएगी। रबड़ी खीर असल में पकती बहुत है, और वो जो साइडों पे बलाई निकलती है रबड़ी की तरह, वो उसके अंदर जाती है, तो वो उसका टेस्ट भी रबड़ी की तरह आ जाता है। तो इसलिए इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा हल्की आग में पकाना पड़ता है। लेकिन आपने इसको जो जिसमें पकाएंगे, वो कोशिश कीजिएगा कि वो स्टील का बर्तन ना, उसमें नीचे लग जाता है। सिल्वर हो या नॉन स्टिक हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है।
0: ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आपको मजेदार सी रबड़ी खीर की रेसिपी दादा ने बता दी है, वो भी बहुत मजे की लगती है भाई।
1: खीर बड़ी
0: लजीज लगती है, बल्कि रबड़ी खीर। अच्छा, मुझे लगता है ना मीठों में ना खीर का तो कोई जवाब ही नहीं है।
1: खीर देखिए, हम लोग जब भी मतलब पहले भी ये खीर होती थी, एक ये होता था मीठे वाले चावल जो जर्दा होता था, इतने मीठे नहीं होते थे। अब तो इतनी सारी वो आ गई वैरायटी, लेकिन अभी भी शादी ब्याह में देखो ज्यादातर खीर रखी जाती है।
0: ऐसा ही
1: गाजर का हलवा रखा जाता है, लौकी की खीर रखी जाती है।
0: लौकी
1: की खीर भी बड़े मजे की होती है।
0: मुझे लगता है वैसे भी खीर इतनी मजे की होती है कि वो हर चीज के एडजस्टमेंट के साथ मजे की ही लगती है, और वो ठंडी ठंडी हो ना तो बहुत मजा आता है। और अभी लास्ट मैंने कहीं रबड़ी खीर किसी की तकरीब में खाई थी, वाकई में वो ऐसी थी कि उसका जायका ना कुछ दिनों तक ऐसे लग रहा था कि आपको आ रहा है, कितना मजा आया। तो ये है कि ये बड़े हमारे ट्रेडिशनल और बड़े अच्छे मीठे हैं, जिनको अब हम माशरे में बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें बना ली हैं, तो चॉकलेट का ये तो वो, लेकिन ये जो हमारे ट्रेडिशनल मीठे हैं, जैसे करदाने का जर्दा है, खीर है, शाही टुकड़े हैं,
1: शाही टुकड़े बड़े मजे के
0: बहुत मजे के लगते हैं। तो इनकी तो खैर बात ही अलग है, और पता नहीं लोग आजकल इन्हें बनाने से क्यों इतना कतराते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है, कस्टर्ड भी बहुत अच्छा लगता है वैसे तो।
1: पहले
0: देसी मीठों में
1: पहले कस्टर्ड होता था सिंपल, उसके अंदर जेली डाल देते थे, उस टाइम में फ्रूट वूट का इतना वो नहीं था। अब तो नई नई चीजें इतनी आ गई हैं, चीज केक आ गया है, ट्रैफल उस तरह से आ गया, केक रस वगैरह डाल के, तो बड़े मजे की। वैसे मीठे आए तो खैर बड़े मजे के, लेकिन जो हमारे उसकी बात ही अलग है।
0: ये बात भी है, और जिस इतने सारे ट्रेडिशनल मीठों की हम बात करें तो उसमें सेवैया भी मुझे याद आ गई, वो भी बहुत अच्छी।
1: दूध सेवैया
0: भी, और वो जो एक सेवैया नहीं ऐसी होती थी,
1: हाँ
0: वो भी लोगों के सामने, उसमें भी बादाम पिस्ते डाल के रखे जाते थे। अब अगर रखे ना तो ऐसा लगता है कि अधूरा तो नहीं रह गया।
1: अधूरा तो नहीं रह गया, सही कह रही है।
0: लेकिन वो मीठा बहुत मजे का लगता था। खैर, नो डाउट, वेरी वेरी यमी मीठे। और मीठों पर बात होते होते हम मीठों पर ही रह गए, और बहुत सारे लोगों का आज कुछ मीठा बनाने का दिल चाह भी रहा होगा। आज मैंने भी सोचा है कि मैं घर जाके सेवैया बनाऊं, कुछ तो बनाऊं।
1: अच्छा।
0: एकदम से आज अलग अलग चीजों का जिक्र।
1: अच्छा,
0: हो रहा है।
1: मेरी बेटी को बहुत पसंद है दूध वाली सेवैया, बड़े शौक से खाती है बेटी, है ना, उसको बड़ी पसंद है। तो मैं भी सोच रही हूँ लेके जाके पैकेट में भी बनाई।
0: यही होता है, पता है, इस तरह की चीजों को जिक्र करने से याद आता है कि बहुत दिनों से हमने ये चीज ट्राई नहीं की है, नहीं बनाई है, तो बना लेना चाहिए। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगी।
1: नहीं, मैं भी बनाऊंगी। अच्छा, वो मोटी वाली सेवैया तो शायद घर में मेरे पड़ी होगी, ब्रांड्स देते रहते हैं ना, वो तो पड़ी होंगी, तो पतली वाली नहीं होगी, तो वो अच्छा जो एक मोटी वाली सेवई है, एक तो कलर वाली होती है, एक ब्राउन वाली होती है, अगर वो आपको वैसे ही वो बनाओ ना, वो बड़े मजे की बनती है। जो नहीं स्क्वायर सा पैकेट होता है मोटा, जो जरा ब्राउन कलर की होती है, उसको जरा सा आपने घी में भूनना है, फिर आपने उसमें इलायची वगैरह डाली है, फिर पानी डाल के हल्की आग पे उसको रख दो, जब वो गलेंगी ना फिर उसमें चीनी डालो, वो भी बड़े मजे की लगती है, बगैर वो मतलब दूध की भी बहुत अच्छी लगती है मोटी सेवइयां।
0: ये भी मजे की चीज रिदा ने बताई, थोड़ी सी डिफरेंट चीज है ये, तो इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। और मजे की रेसिपीज का सिलसिला जारी है, इसी के साथ साथ मीठों पर बात हो रही है और रिदा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इस मौके का बिल्कुल फायदा उठाएंगे और रिदा से ये भी पूछेंगे कि शाही टुकड़े की रेसिपी बताते हैं।
1: चलिए नोट कर लीजिएगा। अच्छा शाही टुकड़े का इस तरह से है कि अच्छा एक डबल का मीठा जो होता है ना, वो अलग वो लोग उस तरह बनाते हैं, जो हैदराबाद वालों का, तो वो लोग क्या करते हैं शीरे में इसको पकाते हैं, तो वो बिल्कुल सौगी हो जाते हैं, वो इतने मजे के नहीं लगते हैं। तो हम लोग किस तरह से बनाते हैं, हम लोग ने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए, उसको आपने फ्राई करके निकाल लेना है, कॉर्नर बेशक कट करें या ना कट करें वो आपकी मर्जी है, उसको गोल्डन ब्राउन करके आपने फ्राई करके निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, जैसे दूध ले लीजिएगा एक लीटर दूध, दूध के अंदर चार खाने के चम्मच चीनी डाल देना, अगर आपके पास जाफरान है, नहीं तो आपने एक चुटकी के जितना येलो फूड कलर डाल देना, दो तीन इलायचियों को कूट के आपने इलायची भी डाल देनी है, दूध को आपने थोड़ा सा पकने देना है। अच्छा मैं क्या करती हूँ उसमें ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर कस्टर्ड पाउडर डाल देती हूँ, तो आप चाहें तो एक खाने का चम्मच आपने वेनिला कस्टर्ड पाउडर को आधा कप दूध के अंदर घोल के वो भी डालना, हल्की सी थिकनेस उसमें आएगी, वो भी आपने डाल देना। उसके बाद आपने क्या करना है, खोया लेना एक पाव के जितना, थोड़ा सा खोए को हाथ से क्रश करके वो उसी कस्टर्ड के अंदर शामिल कर देना। अब ब्रेड के स्लाइसेस जो आपने फ्राई करके रखे हैं, वो आपने क्या करना है, पहले एक लेयर देना एक कस्टर्ड की वाली जो दूध की, उसके बाद आपने क्या करना है उसमें ब्रेड के स्लाइसेस रख देना, उसके ऊपर पूरा सारा मिक्सचर दोबारा डालेगा, उसके ऊपर खोया डालेगा, बादाम पिस्ते डालेगा और चांदी के वर्क लगा दीजिएगा, बेहतरीन किस्म के शाही टुकड़े जो है तैयार हो जाएंगे,
0: मजेदार से, बिल्कुल ऐसा ही। और मैंने शाही टुकड़े की रेसिपी रदा से ही सीखी थी, क्योंकि वो पैकेट वाले नहीं, इतना आसान है, क्या जरूरत है, तो वो बड़े मजे के बने, मैंने जब जब बनाए तो आई फेल्ट सो अप्रिशिएट, अच्छी तारीफें मिली।
1: अच्छा हाँ, नहीं नहीं आप तो वैसे ही मैंने देखा कुकिंग करती हैं और अच्छा ही बनाती हैं। अच्छा जिनको शौक है जाहिर उनका टेस्ट भी होता है,
0: बस ये होता है कि इतनी मेरे अच्छा बनाओ ना, बस जायका अच्छा हो कि खराब ना हो, इतनी मैं तो प्रिपरेशन से बना रही होती हूँ। और अब तो जैसे रदा हो गई, हमारी अम्मी वगैरह थी एक्सपीरियंसड है, तो ये लोग कुछ भी बनाती है सुकून से बैठ जाती है, मैं कहती हूँ अल्लाह अम्मी कैसे आप लोग बार बार पतीला खोल के नहीं देखते, जी टेंशन रहती है, हाथ की चीज दम पर पियो ना तो भी बेचैनी रहती है कि जरा देख लूं जरा देख लूं, मेरे साथ तो ये बड़ा मसला होता रहता है, इतनी टेंशन रहती
1: है। अभी मतलब जैसे आप लोग तो बच्चे हो नहीं सीखे, अब हमें तो इतना एक आइडिया हो गया ना, हमने कभी वो मतलब जैसे मिर्च मसाले चम्मच से गिन गिन के नहीं डालते, हम गिन गिन के नहीं डालते हैं सारी चीजें। मैं बता रही, मैं गई हुई थी अमेरिका ना, अमेरिका में गई हुई थी, तो वहां पे एक अंकल टाइप के थे, तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरी आदत है, मैं हर किसी टाइम है हमारे पास
0: बस 10 सेकंड है,
1: तो वो उन्होंने कहा कि भाई निहारी में बनाऊंगा, उन्होंने पूरी डायरी निकाली, उन्होंने सारे मेजरमेंट की चीजें निकाली, मैंने कहा अल्लाह इतना लो, और वो कहते थे मेरा रेस्टोरेंट है आप, मैंने कहा हम तो ये चीज डालो वो चीज डालो हमारी चीज पूरी पक जाएगी, इतना टाइम वेस्ट किया।
0: ये तो गुस्सा भी आता है जब आपकी आदत ना हो, साथ के कोई काम करे तो ऐसे
1: एक एक चीज को नाप तोल तोल के डाल रहे थे।
0: चलो जी, तो वी हैड अ ग्रेट टाइम एज ऑलवेज विद रदा आफ्ताब, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, मैं तो आपके साथ 2 बजे तक मौजूद हूँ, लेकिन हम रदा को करते हैं खुदा हाफिज़।
1: चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह ताला कमिंग फिर फ्राइडे से सैटरडे आप लोगों से मुलाकात होगी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: FM 100's time check. It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: अज़ान ज़ुहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान ज़ुहर का वक्त हुआ चाहता है।

वेलकम बैक जी. आज डिफेंस के स्पेशल प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ है. प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में आज उसी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. जी हां, हमारे शहीदों और गाजियों को हम सलाम पेश करते हैं. उन लोगों को सलाम जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया. उनकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि वतन से मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं, कमिटमेंट से साबित होती है. हमारे शहीद हमें ये सबक दे गए कि जब जिम्मेदारी सामने हो तो अपने फायदे से पहले मुल्क और अपने लोगों का सोचना चाहिए. उनकी बहादुरी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में पीछे हटना नहीं बल्कि अपने फर्ज के लिए मजबूती से खड़े रहना है. एक सोल्जर बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है और हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे होते हैं, जिसमें इसका ही अहम किरदार है. हमारे सारे सोल्जर्स हमारे लिए कितना एफर्ट करते हैं. आज उनको ट्रिब्यूट देने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ईमानदारी से निभाएं. ये एक बहुत जरूरी बात है. हकीकत है कि जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से इश्क करते हैं, तो इसको किस तरह साबित किया जाए. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी मुझे बड़ा जोश और जज्बा है, कभी भी कोई मुल्क में मुश्किल वक्त आया तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा, या मैं किस तरह अपने मुल्क से मोहब्बत को जताऊं. तो इसमें सबसे जो अहम और मेन फैक्टर है ना, वो ईमानदारी है कि आप अपना जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी से करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, झूठ ना बोलें, पढ़े लिखें, काबिल बने. ये सारी चीजें भी जो है ना, वो आपके मुल्क के फवायद में से एक हैं. तो जो भी आप काम करते हैं ईमानदारी से करें, अपने मुल्क का साथ देने में ये चीजें जरूर शुमार होती हैं. तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके जरिए आप अपने मुल्क का साथ दे सकते हैं. आज हम डिफेंस डे स्पेशल शो कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं हम अपने शहीदों को, अपने गाजियों को, और ये एक ट्रिब्यूट डे है. और क्योंकि हम आपके साथ कल मौजूद नहीं होंगे, इसलिए आज हम डिफेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं. जरीनूर के भी मैसेज आए हैं, कहती हैं आज फिश का सालन है और बॉयल चावल है, जबरदस्त हो चुका है. रशीद खान कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, जबरदस्त. कहते हैं कि जी ऑफिस से सुन रहे हैं, दिन भी अच्छा गुजर रहा है. लंच में कलेजी है, आपके लंच में शहीदों को सलाम. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. ऑल राइट जी, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं. बिल्कुल, ये तो हकीकत है. और साथ ही साथ हम सोनी धरती को शामिल करेंगे क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है और कहने को इतना कुछ है लेकिन वक्त बहुत कम है. तो इसे शामिल करते हैं और आते हैं वापस इसके बाद.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837
0: and
4: Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Kudrat ka nizam tawazun par qaim hai. وسائل سے زیادہ آبادی کے بھوت سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

0: 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837
0: and Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
7: FM 100. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: in setting up free-of-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोबराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837
2: and
4: Shaukat Khanum Karachi Ki Takleef.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: And
2: Shogat Khanam, Karachi Ki Takleef.
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
0: facebook.com/fm247365
6: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तैद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
3: facebook.com/fm247365
4: fm247365 fm100
5: 31 saal fm100 aapki awaaz assalamu alaikum pakistan
4: assalamu alaikum pakistan

0: setting up pre-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: FM247365 FM247365

0: setting up low-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं।
2: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
6: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजे या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
9: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
11: आज ही डोनेट करने के लिए 08001155 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एंड सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
12: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: Us on facebook.com/fm247365
14: fm247365

It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Ground के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाइल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदामात जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाइल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाइल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
3: FM 247 365 FM 247 365

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: 24/7, only on one FM 100, the best entertainer.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
4: 100 FM.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा.
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर एडमिशंस ओपन फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
6: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
7: शौकत खानम कराची की तकदीर
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
9: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
11: Like us on facebook.com/fm247365
12: fm247365 24/7 365

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
6: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
8: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है. ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है. मातला इल्मी, जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है. ऐसी कोई खाने पीने, लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो. वालिदैन, असातिजा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें. हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है. नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार. मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें.
9: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
10: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
2: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम होगी.
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
9: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए.
6: आइए वेट से आगे का सोचें.
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
10: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है. साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं. इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई. महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं. हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस. हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें. pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है. अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें. ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें. इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें. सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें. किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें. क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: It's 24 hours non-stop vibration connecting you, holding you, with FM 100.
2: FM 100. FM 100.

0: This program is brought to you by Shaukat Khanam, Karachi ki Taqleef.
1: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहमल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
6: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुताबिक किसी भी मसले के हल के लिए नात्रा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मुल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपकी शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहम के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
0: facebook.com/fm247365
7: 247-365.

0: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karachi ki Takleef.
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फौज उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

गया, मैं थक सा गया, और चुप हो गया, मैं थक सा गया, और चुप हो गया, मैं थक सा गया, और चुप हो गया।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, Across Pakistan, this is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.